0: It's hot. Mirchi. It's hot.
1: Mirchi.

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
2: Aajkal everything in Bollywood is about the opening weekend. Songs, trailers, dialogues, even emotions. सब कुछ इस तरीके से डिजाइन होता है कि फ्राइडे से संडे तक इंटरनेट पे नॉइज बने रहे, लेकिन उसके बाद इट्स टाइम फॉर द नेक्स्ट रिलीज। और इस रेस में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज खो दी है, रिपीट वैल्यू। वो गाने जो आदमी खुद ढूंढ के वापस सुनता था, वो फिल्म्स जिनके सीन्स लोग स्कूल और ऑफिस में रिपीट करते थे, वो डायलॉग्स जो कल्चर का हिस्सा बन जाते थे। आज कंटेंट ज्यादा है लेकिन कनेक्शन कम। लेकिन फिर भी हर हफ्ते इस ओवरलोड में कुछ आवाजें, कुछ फिल्म्स और कुछ मोमेंट्स ऐसे आ जाते हैं जो याद दिलाते हैं कि बॉलीवुड अभी भी सरप्राइज कर सकता है। तो देन द मिर्ची टॉक 20 स्टार्ट्स राइट नाउ। मैं हूं सुरेन सुंदरम एंड सबसे पहले एक एल्बम जो इस पूरे साल की सबसे ब्रिलियंट एल्बम्स में से एक है। ना इसमें डांस ट्रैक्स मिलेंगे, ना फिलर सॉन्ग्स, ना वो गाने जिन्हें आप एक बार सुन के भूल जाए। इस एल्बम पे मेहनत गई है, चांद मेरा दिल, सचिन जिगर की मेहनत। एंड नंबर 20 पर है खासियत बाय राघव चैतन्य और जोनीता गांधी। खत्म होने के बाद भी फिर सुनने का मन ना करे तो मेरा नाम बदल देना। नंबर 20।

नंबर 19 पे रूप दी रानी फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। ऑनेस्टली मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं कि गाना चार्ट्स पे स्लाइड करके 19 पे पहुंच गया है, चार स्पॉट्स नीचे। और शायद अगले हफ्ते ये गाना कंप्लीटली आउट भी हो जाए, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिया का कॉस्ट्यूम पहन के आते हैं, सोल नहीं। आप उन्हें सुनते वक्त कॉन्स्टेंटली ओरिजिनल गाने को याद करते हैं, एंड फिर अचानक नंबर 18 पे एक ऐसा कोलैब एंट्री लेता है जो थियोरेटिकली एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए था, विशाल मिश्रा इन एन अनुराग कश्यप फिल्म कॉल्ड बंदर। और ये गाना क्यों मजा आ रहा है यार, क्या स्ट्रेंज हॉन्टिंग ट्रैक है ये, जब पूरी इंडस्ट्री एल्गोरिथम फ्रेंडली हुक्स, ढोल ड्रॉप, स्टेडियम कोरसेस के पीछे भाग रही है, दिस सॉन्ग जस्ट विस्पर्स, बस धीरे से अंदर पहुंच जाता है। नो लाउड पे ऑफ, नो स्क्रीमिंग हुक, बस माहौल, द एटमॉस्फेयर, वो लेट नाइट लोनलीनेस, वो अकेलापन। और विशाल मिश्रा की आवाज, बंदा गा नहीं रहा, बंदा अपने दिल को समझा रहा है, रोका था कब से, संभाला था कब से। द राइटिंग इटसेल्फ फील्स टायर्ड इन अ गुड वे, इट्स एग्जॉस्टेड, जैसे कोई आदमी खुद को कन्विंस करते करते हार गया हो। और प्रोडक्शन भी देखो, मिनिमल पर्कशन, एम्बिएंट सिंथ्स, टाइनी अकूस्टिक गिटार फ्रेजेस जो फ्लोट करते हैं जैसे ख्याल पूरे ना हो, अनफिनिश्ड थॉट्स। ये गाना परफॉर्म नहीं करता, हॉन्ट करता है। एंड सबसे स्मार्ट चॉइस, विशाल नेवर बेल्ट्स द लाइन क्यों मजा आ रहा है, वो उसे आहिस्ते कहता है, लाइक अ मैन एम्बैरस्ड दैट ही इज फॉलिंग इन लव अगेन। इट्स ब्यूटीफुल रिस्ट्रेंट, एंड इट शॉक्स मी कि अनुराग कश्यप के सिनेमा में ऐसा इमोशनली डैमेज रोमांस फिट हो सकता था। This is purely mood over melody, texture over trend. Gaana number 18 is hafte kyun maza aa raha hai from Bandar. Number 18.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 Mirchi. It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot. Number 70. Kiss me,

0: नंबर 17 पे मस्कारा फ्रॉम मैं वापस आऊंगा, रहमान साहब का म्यूजिक, इम्तियाज अली की दुनिया, और स्क्रीन पे दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शर्वरी वाघ। एंड ऑब्वियसली फिल्म रिलीज से पहले इंटरव्यूज तो होते ही हैं, आफ्टर ऑल प्रमोशन साइकिल का हिस्सा है। तो वेदांग और शर्वरी से पूछा गया, दिलजीत दोसांझ की कौन सी क्वालिटी आप लेना चाहोगे, और दोनों का आंसर ऑलमोस्ट एक ही इमोशनल यूनिवर्स में आया।
1: आई थिंक जस्ट हिज ऑनेस्ट आईज, लाइक ऑनेस्टी, लाइक हिज आईज आर जस्ट टू ऑनेस्ट। आई थिंक वो एक चीज होती है जो आप हमेशा चाहते हो एज एन एक्टर, टू हैव ऑनेस्टी इन योर आईज, एंड वो उनके साथ बहुत आसानी से हो जाता है। मे बी बिकॉज इट्स जस्ट द पर्सन दैट ही इज, एंड आई थिंक ही जस्ट एमिट्स दैट काइंड ऑफ पॉजिटिविटी और द काइंड ऑफ लव एंड अफेक्शन। बट यू नो, लाइक वो होता है ना कि कोई, कुछ लोग अपनी आंखों से स्माइल करते हैं, आई थिंक दैट्स इन हिज केस, एंड सो आई थिंक वो अपनी आंखों से ही इज एबल टू कम्युनिकेट विद सो मच ऑनेस्टी दैट आई डू होप दैट समडे आई एम एबल टू लाइक लर्न दैट वैल्यू।
2: एज अ पर्सन मैं उनको इतना जानता नहीं है और इतना मौका भी नहीं मिला शूट करने के लिए, बट ही जस्ट कम्स अक्रॉस एज अ पॉजिटिव और ऑनेस्ट पर्सन, और वो उनकी परफॉर्मेंस में दिखता है, विच इज अ वेरी यूनिक थिंग आई फील, एंड इट्स सच अ ग्रेट थिंग कि आप जैसे काइंड ऑफ रियल लाइफ में हो, इट काइंड ऑफ शोज ऑन स्क्रीन ऑल्सो, एंड वो आई मीन वो बहुत ही कमाल के एक्टर।
0: मैं जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हूं, ये ऑनेस्टी इन द आईज एग्जैक्टली मेजर कैसे की जाती है? क्या FTII में अब अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, लाइक मेथड एक्टिंग, कैमरा ब्लॉकिंग, आंखों की ऑनेस्टी? मुझे समझना है यार, टॉक अबाउट द क्राफ्ट ना, बोलो कि बंदा सीन प्रेपरेशन बहुत डेंजरस करता है, बोलो इम्प्रोवाइजेशन इनसेन है, बोलो रिदम समझता है, बोलो कैमरा अवेयरनेस नेक्स्ट लेवल है दिलजीत की, लेकिन नहीं, इंडियन एक्टर्स इंटरव्यूज में अचानक फिलोसोफर्स बन जाते हैं, सब ग्राउंडेड, सब ग्रेटफुल, सब हम्बल्ड, ये कोई नहीं बोलता हाँ यार पहले दिन फट गई थी, हाँ यार सीन समझने में थोड़ा टाइम लगा, एवरीथिंग साउंड सो PR फिल्टर्ड, सो PR सेफ नाउ, और ऑडियंस को ये पॉलिश फील हो जाती है। इसलिए जब कोई फिल्म या परफॉर्मेंस जेन्युइनली रॉ लगती है ना, लोग उसके साथ इंस्टेंटली कनेक्ट कर जाते हैं, और इस वक्त बॉलीवुड में अगर कोई फिल्म रॉ कन्विक्शन पे चल रही है तो वो है धुरंधर। ना फेक सोफिस्टिकेशन, ना ओवर थिंकिंग, बस सीधा इमोशन। गाना नंबर 16 इस हफ्ते है जैस्मिन सैंडलर्स और सतिंदर सरताज की आवाज में, जाइए सजना।
3: नंबर 16

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 50।

0: नंबर 15 पे था चांद मेरा दिल। एंड सच में ये फिल्म मुझे एग्जैक्टली इंस्टाग्राम रील्स वाली फील देती है। इट्स प्रिटी, इट्स रोमांटिक, सॉफ्ट लाइटिंग है, गुड लुकिंग लोग हैं, आप देखते हो, एंजॉय भी करते हो और एक मिनट बाद याद ही नहीं रहता कि क्या देखा था। लेकिन अब जो आ रहा है ना, उसमें प्रॉब्लम मेमोरी की नहीं है, प्रॉब्लम कंपैरिजन की है। इस हफ्ते का गाना नंबर 14 है फ्रॉम द मूवी है जवानी तो इश्क होना है एंड द सॉन्ग इज चुनरी चुनरी। नाउ टेक्निकली ये 2026 वर्जन है और सलमान खान एंड सुष्मिता सेन का वो आइकॉनिक ओरिजिनल सॉन्ग। लेकिन मैंने ये गाना बार बार सुना, सच में कोशिश की वो सेम इमोशन फील करने की, वो सेम मैडनेस, वो सेम नशा, बट नो, ये गाना रीमिक्स लगता है एंड वो भी डेंजरस टाइप का रीमिक्स, वो जो हर 20 सेकंड बाद आपको ओरिजिनल की याद दिलाता है। एंड यू नो सबसे बड़ा मिस क्या है, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज। बस कुछ गाने सिर्फ कॉम्पोजिशन नहीं होती, वो आवाजों की केमिस्ट्री होती है और उस ओरिजिनल में जो प्लेफुलनेस थी ना वो मिसिंग है यार। एंड शॉक इस बात का है कि मेरा भाई वरुण धवन म्यूजिक समझता है, लाइक जेन्युइनली समझता है। हमने कितनी बार म्यूजिक के बारे में बातें की हैं यार, वरुण मुझे पहले ही बता देता था ये गाना ऑसम है ब्रो, जरूर पॉपुलर होगा। उसने मुझे समझावा पे ये बात बोली थी,
1: ना तेनु समझावा की ना तेरे बिना लगदा जी।
0: उसने मुझे सुन साथिया पे ये बात बोली थी।

0: उसने मुझे जीना जीना पे बात बोली थी।
1: ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम।
0: और तीनों बार वो सही निकला, इसलिए मुझे जेन्युइनली सरप्राइज होता है कि उसने चुनरी चुनरी का ये वर्जन आखिर पास कैसे कर दिया, क्योंकि YouTube कमेंट्स भी कुछ ऐसा ही बोल रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूं। दिस डजंट फील रीइमेजिन्ड, इट फील्स लाइक अ बूटलेग वर्जन। लेकिन चलिए, मे बी ऑडियंस मुझे गलत प्रूव कर देगी। इस हफ्ते का गाना नंबर 14 इज द डेब्यूइंग चुनरी चुनरी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है।
2: नंबर 14।

0: Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot.
1: Number 13.

नंबर 12 पर था हमने वही दिल लगाया फ्रॉम पति पत्नी और वो दो। और मुझे याद है मैंने पिछले हफ्ते ही आपको ये बताया था, ये पहले इंटरनेट का गाना था, फिर रील्स का गाना बना, फिर रॉ इमोशन का गाना बना एंड बॉलीवुड में इन सब के बाद आया। ऑनेस्टली ये चीज मुझे हमेशा एक इंटरेस्टिंग बात याद दिलाती है। फिल्म

0: गाना डाल दो, वेडिंग ट्रैक चाहिए मुझे यहाँ, यहाँ एक ब्रेकअप वाला गाना होना चाहिए, बस कहानी से कनेक्ट हो या ना हो, इट डजंट मैटर। एंड देन यू गॉट द सेकंड कैटेगरी, वो डायरेक्टर्स जो म्यूजिक को फिल्म की रूह समझते हैं, जो कंपोजर्स के साथ बैठते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, स्क्रैच वर्जन्स रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है अ ग्रेट सॉन्ग फिल्म को सिर्फ प्रमोट नहीं करता, वो उसे इमॉर्टल बना देता है। विशाल शेखर ने एक बार मुझे बताया था कि कैसे सिद्धार्थ आनंद अपनी फिल्म्स के म्यूजिक को लेकर ऑब्सेस करते हैं, एंड ऑनेस्टली वो दिखता भी है। सलाम नमस्ते, बचना हसीनो, अनजाना अनजानी, बैंग बैंग, बंदा रोमांस को सिर्फ विजुअल से नहीं, म्यूजिक से स्टेज करता है। और जब रोमांटिक सॉन्ग्स की बात आती है ना, सिद्धार्थ आनंद जेन्युइनली समझते हैं दैट लॉन्गिंग का टेक्सचर क्या होता है, डिजायर का रिदम क्या होता है। इसलिए इन एन एक्शन थ्रिलर लाइक बैंग बैंग, वहां भी मेहरबान जैसा एक गाना क्रिएट कर दिया। एंड यू नो व्हाट द फनी थिंग इज, फिल्म के एक्शन सीन्स लोग शायद भूल गए होंगे, लेकिन ये गाना उन्हें अब भी याद है। रिसेंटली शिल्पा राव ने इसका एक अनप्लग वर्जन अपने सोशल्स पे अपलोड किया था, और यार क्या सॉफ्टनेस है उस परफॉर्मेंस में।
1: दिल

It's just beautiful, isn't it? Now, विशाल मिश्रा का दीवानियत इस हफ्ते नंबर 11 पर है, लेकिन सिद्धार्थ आनंद की दीवानियत पूरी करनी जरूरी है. This is my special request. इसे पूरा सुनिएगा. From Bang Bang, this is मेहरबान by Shilpa Rao and Ash King. Special request song.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Surin ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 10.

मामा शुका नंबर 10 पे इस हफ्ते फुल मेडिटेरेनियन केओस लेकर डेब्यू कर रहा है माशुका फ्रॉम कॉकटेल 2। शाहिद कपूर इज इन फुल चार्मिंग रोग मोड, कृति सैनन वो एफर्टलेस ग्लैमर एनर्जी लेके आ रही है एंड प्रीतम दा वंस अगेन प्रूविंग कि वो हुक बनाना भूले नहीं है। लेकिन इंटरनेट को ऑब्वियसली मेलोडी से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी पसंद है। अब पूरा सोशल मीडिया इस बात पे लड़ रहा है कि माशुका सपोजिटली एक 32 साल पुराने 32 years ago इटालियन सॉन्ग से इंस्पायर्ड है।

0: और फिर वही ओल्ड कमेंट्स फिर निकल आए, प्रीतम हैज कॉपीड अगेन। देखिए मैं यहाँ प्रीतम दा की साइड पर हूँ, हाँ उनका पास थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल, थोड़ा सा चेकर्ड रहा है, नोबडी इज डिनाइंग दैट, लेकिन ये सिचुएशन मुझे थोड़ी अलग लगती है। महमूद कोई रैंडम वोकलिस्ट नहीं है, बंदा ऑफिशियल कोलैबोरेटर है इस गाने पे, एंड भाई नाम महमूद है बट ही इज नॉट एन इंडियन, ही इज इटालियन, उसने खुद इटालियन पोर्शंस लिखे हैं और उन्हें परफॉर्म किए हैं, तो मुझे जेन्युइनली नहीं लगता कि ये चोरी वाला सिचुएशन है। और एक और बात, हर मेलोडी जो इंडियन कानों को कॉपीड लगती है ना, जरूरी नहीं है कि वो कॉपीड ही हो। What if that melodic phrasing is just culturally Italian? क्योंकि हम Indian listeners automatically assume कर लेते हैं कि unfamiliar melody मतलब lifted melody. And सच में internet को context से ज़्यादा outrage पसंद है. We know it. वैसे इस वक्त number 9 पे सैयारा का title track भी quietly अपना emotional empire build कर रहा है. लेकिन अब charts पे आ रहा है एक और धुरंधर का chapter. And unlike Mashuka, ये गाना subtle नहीं बनना चाहता. This one walks in with pure vibe energy. Gaana number 8 is Hafte. Main aur Tu by Jasmine Sandlars from Dhurandhar, The Revenge.
1: Number 8.

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। मिर्ची इट्स हॉट। सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नंबर 7।

नंबर 6 पे इस वक्त फुल वेडिंग सीजन हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है ये गाना ब्याह करवा दो जी फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। वरुण धवन इज इन फुल केओस एनर्जी मोड। ननाल ठाकुर लुकिंग लाइक शी वॉक्ड आउट ऑफ अ यशराज शादी यूनिवर्स। और मिक्का पाजी तो वही कर रहे हैं जो मिक्का पाजी पिछले 20 सालों से करते आ रहे हैं, कमांड इंडियन बारात। देखिए गाना काम कर रहा है, पिछले हफ्ते के मुकाबले ये 2 स्पॉट्स ऊपर भी आया है, लेकिन इशू ये नहीं है। कुछ गाने सिर्फ मोमेंट कैप्चर करते हैं एंड कुछ गाने वक्त कैप्चर करते हैं, दोनों में फर्क होता है। वैसे व्याह करवा दो जी इज अ फन सॉन्ग, इट्स अ लाउड सॉन्ग, इट्स अ सेलिब्रेटोरी सॉन्ग, लेकिन सच ये है मुझे नहीं लगता कि 3 महीने बाद हम इसे वॉलंटेरिली सर्च करेंगे, क्योंकि म्यूजिक का असली पर्पस वायरलिटी नहीं होता, इमोर्टैलिटी होता है। बार बार सुनने का मन करना चाहिए। जब सिंगर माइक के सामने खड़ा होता है ना, वो ट्रेंड नहीं बनना चाहता, वो याद रहना चाहता है। और फिर कुछ आवाजें आती हैं जो वक्त से ऊपर चली जाती हैं। अरिजीत सिंह, सोनू निगम, कुमार सानू, एंड देयर इज ऑल्सो वन मोर नेम विच इज क्लोज टू माई हार्ट, हरिहरन साहब। बस एक हरकत और माहौल बदल जाता है। तू ही रे, झोंका हवा का, कितनी बातें, और ए आर रहमान के साथ उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को मेलोडी बना दिया। लेकिन एक सिंगर की असली ग्रेटनेस तब दिखती है जब स्टूडियो प्रोटेक्शंस हट जाते हैं, और हरिहरन साहब ने कई बार ए हैरते परफॉर्म किया है एक लाइव कॉन्सर्ट में, और यार वो गाना नहीं लगता।

0: Isn't it beautiful? इसलिए मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी है नए गाने सेलिब्रेट करना, लेकिन लेजेंड्स को आर्काइव नहीं होने देना। और इस हफ्ते का रीवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक इज फ्रॉम ताल। रहमान साहब इज इन डिवाइन मोड, हरिहरन साहब इज इन इम्पॉसिबल फॉर्म।
1: टॉप 20 रीवाइंड।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट
0: के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 5.

नंबर पांच पे इस वक्त प्योर बॉलीवुड रोमांस डिस्कोर्स को हाईजैक कर चुका है गहरा हुआ फ्रॉम धुरंधर। हमजा और यालीना की लव स्टोरी का वो चैप्टर जहां एवरीथिंग स्टिल फील्स वार्म, इट फील्स सेफ, इट फील्स ब्यूटीफुल। अब तक बिट्रेल्स नहीं आया है, धोखा नहीं आया है, नो एस्पियनेज स्कार्स, बस दो लोग जो स्लोली एक दूसरे की दुनिया बन रहे हैं। एंड ऑनेस्टली धुरंधर ने लव को बहुत फिल्मी तरीके से नहीं, बहुत ह्यूमन तरीके से लिखा। दैट ऑकवर्ड सॉफ्टनेस, द इमोशनल डिपेंडेंस, द कंफर्ट, और फिल्म आगे बढ़ती है और प्यार शादी बन जाती है, फैमिली बन जाती है, एक बच्चा आ जाता है, अंटिल द ट्रूथ डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग कि हमजा सिर्फ एक पति नहीं था, वो एक इंडियन स्पाई जासूस था और उसे अपना वतन चूज करना पड़ा, इवन ओवर द पीपल ही लव्ड मोस्ट। लेकिन जो चीज कभी खत्म नहीं हुई वो था उसका इश्क। और शायद इसलिए धुरंधर 2 का एक गाना आखिरी इश्क मुझे एक हार्ट ब्रेक सॉन्ग नहीं लगता, ये मुझे क्लोजर लगता है। इफ गहरा हुआ वॉज द फर्स्ट हार्ट बीट, आखिरी इश्क इज द लास्ट ब्रेथ। मैं ना रहा तो क्या हुआ, तेरे पास है इश्क मेरा। यार क्या राइटिंग है। आदित्य धर ने सिर्फ स्पाई थ्रिलर नहीं बनाई, उन्होंने एक लव स्टोरी को एक प्रॉपर इमोशनल एंडिंग दी है। और इस वक्त टेक्निकली चार्ट्स पे अगला गाना तो है अक्षय कुमार की कमबैक फिल्म भूत बंगला का तू ही दिसदा, विच इज ऑन नंबर 4। लेकिन कुछ मोमेंट्स काउंटडाउन लॉजिक से बड़े होते हैं। एंड आज वी फिनिश हमजा और यालीना की लव स्टोरी प्रॉपरली। माय पिक ऑफ द वीक इज फ्रॉम धुरंधर 2 द रिवेंज बाय द मैन ऑफ द मोमेंट जुबिन नौटियाल एंड शाश्वत सचदेव। ये है आखिरी इश्क। पिक ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
2: नंबर 3

0: दिखाओ। नंबर दो पे इस वक्त फुल मास हिस्टेरिया क्रिएट कर रहा है वाओ फ्रॉम है जवानी तो इश्क होना है। एंड ऑनेस्टली ये मेरे लिए जेन्युइनली सरप्राइजिंग है क्योंकि ये गाना एक महीना बिता चुका है लेकिन शायद फिल्म थिएटर्स में आते ही इसका बज और बड़ा हो गया है। और शायद उसका रीजन सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, इमोशन है। क्योंकि अगर आपने वरुण धवन का अपने डैड डेविड धवन के साथ वो इंटरव्यू देखा है देन यू नो दैट दिस इज डेविड सर्स लास्ट फिल्म एज अ डायरेक्टर। यार क्या लेगेसी है इनकी, हीरो नंबर वन, कूली नंबर वन, राजा बाबू, पार्टनर, बीवी नंबर वन, मुझसे शादी करोगी, हिंदी सिनेमा की कॉमेडी डीएनए में परमानेंटली लिखी हुई फिल्म्स हैं ये, ऑल डायरेक्टेड बाय डेविड धवन। लेकिन उस इंटरव्यू में एक बहुत ही स्वीट मोमेंट था, एक बहुत ही ह्यूमन मोमेंट। वरुण अपने फादर को लिटरली कन्विंस कर रहे हैं कि अब रेस्ट कर लो, हॉलीडेज पे जाओ, लाइफ एंजॉय करो, लेकिन डेविड सर वो बस अंडा पाव की बात कर रहे हैं। स्टारडम के बाद भी सिंप्लिसिटी नहीं गई और शायद इसलिए उनकी फिल्म्स में वो वार्म्थ, वो मिडिल क्लास मैडनेस, वो ह्यूमन केओस हमें अब भी दिखता है।
1: See, Papa, what we want as children, if I can tell you, near people, yeah. or any child wants yeah. is that if you have, आपने पैसा कमाया है, नाम कमाया है, शोहरत कमाया है, तो आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप आराम करें। बट मेरे माँ बाप बहुत हाइपर है तो मुझे कोई एडवाइस दे सकते हैं उनको थोड़ा सा? आई कीप टेलिंग देम ना रिलैक्स, आपको हॉलीडे जाना है, फर्स्ट क्लास की टिकट कर, आपको जहाँ जाना है मैं भेजने के लिए तैयार, आपको जो चाहिए दुनिया में मैं देने के लिए तैयार हूँ,
2: मुझको भीड़ में छोड़ दो।
1: इनको अंडा पाव ही खाना है, इनको वही
2: मैं बड़ा ही वही हुआ। मैं जब सांता क्रूज़ ईस्ट में रहता था रात को हम लोग सब वही अंडा पाव ही मिलता था रात को 12 बजे, ये वो जो चले गए उधर खा के आ गए, पर वो मजा अलग ही था ना। And a struggle, everyone has to do struggle. ये बोलते हैं कि पहली शॉट में जो हिट फिल्म दे देता है ना तो उसकी आगे की लाइफ खराब हो जाती है।
0: हिट फिल्म पहले मिल जाए तो लाइफ खराब हो जाती है। Dude, what a line. David sir, happy retirement. लेकिन अभी एपिसोड एंड हो रहा है उस फिल्म मेकर के साथ जिसके पास इस वक्त बॉलीवुड का हॉटेस्ट सिनेमैटिक यूनिवर्स है, आदित्य थर और धुरंधर का अनस्टॉपेबल स्टॉर्म, नंबर वन फॉर अ 15th टाइम ऑन द मिर्ची टॉप 20 है जैस्मिन सैंडलर्स एंड मधुवंती बागची का शरारत। नंबर वन टू

0: और बस इसी के साथ मिर्ची टॉप 20 का ये एपिसोड यही खत्म होता है। देखो हाइप थी, हार्ट ब्रेक भी था, नॉस्टैल्जिया भी था और थोड़ी सी अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी भी थी। बॉलीवुड हर हफ्ते बदलता है लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती एंड दैट इज ग्रेट म्यूजिक जो इवेंचुअली अपना रास्ता बना ही लेता है। फिर मिलूंगा आपसे किसी और मोड पे। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। 98.3 Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: DJ Bridget.
1: वीकेंड ऑफिशियली एक्टिवेटेड, अटेंडेंस लग गया है। कल तक जो लोग बोल रहे थे मैं घर पे चिल करूंगा, वो अब मिरर के सामने आउटफिट चेंज कर रहे हैं कि नहीं। क्लब मिर्ची शुरू होता है यही से विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका। हमारे साथ पार्टी का थर्मोस्टैट फुल हाई, स्ट्रेच कर लो, डांस फ्लोर पे नीज की वारंटी खत्म होने वाली है। इट्स टाइम टू लीन ऑन विद मेजर लेजर, लेट्स

इसलिए सजना वीकेंड पे रिलेशनशिप स्टेटस सिंपल है, कमिटेड टू द डांस फ्लोर. क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टेका. टाइम टू लेवल अप. यस.

0: सपनों में रोज आए आ जिंदगी में आना सन
1: जाने जाना क्रश को इम्प्रेस करने का एक ही तरीका है डांस मूव्स किलर होनी चाहिए क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोम दिखा ये दो पत्ती आपको नचा के ही छोड़ेगी लेट्स गो

Welcome back. Club Mirchi जा रही है DJ Richard Mirchi और यौन देखा के साथ. Weekend memories और blurry photos. Iconic combo. उसपे अगर इस weekend पे आपका first kiss है. Next song goes out to you by Honey Singh. Let's

का ट्रूथ पोस्ट 2 सेकंड एडिटिंग 2 घंटे क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका जो लोग गैलरी खोल के बैठे भाई इसमें तेरा घाटा अभी तो टाइम है डांस फ्लोर पे मचाने का।

0: मी मिर्ची और योंतिका पैर खुद ब खुद नाचेंगे क्योंकि हम हैं क्लब मिर्ची के धुरंधर्स। लेट्स गो
1: लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर नॉट

वेलकम बैक क्लब मिर्ची पे डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका आपके साथ। मंडे का अलार्म और पार्टी का एंड दोनों इलीगल लगते हैं, राइट? और इन सबको इग्नोर करके हम बनते हैं क्रिमिनल एवरी वीक। लेट्स गो।

सारे जीप फाड़ के।

ही तरीका है क्लब मिर्ची. सुनो हमारे साथ, नाचो, चिल करो एवरी वीकेंड. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योनिका आपके साथ, और वीकेंड कॉन्फिडेंस फुल बैटरी लॉजिक लो पावर मोड पे रख के चलिए चलते हैं चोली के पीछे.

रेंडेवू ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका। चांदनी रातों में चांदनी का गाना, इससे ज्यादा अच्छा कॉम्बो हो ही नहीं सकता। और क्लब मिर्ची कम्युनिटी में हम ऐसे रहते हैं जैसे इन द गेटो। लेट्स गो।

खतरों के खिलाड़ी धुरंधर्स ऑल ऑन द डांस फ्लोर जान से गुजरते हैं हम ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल ओवर द डांस।

सैलरी और स्लीप दोनों गायब, जवा हो यारो तो अफकोर्स क्लब मिर्ची के साथ एंजॉय करो, लुटे जाओ डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची।

0: Mirchi, it's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go
2: on a ride.

खतरों के खिलाड़ी धुरंधर्स ऑल ऑन द डांस फ्लोर जान से गुजरते हैं हम ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल योर बिका।

तुमको हुआ क्या अजी हमको देखो सरा जवाब यारो ये तुमको

सैलरी और स्लीप दोनों गायब, जवा हो यारो तो अफकोर्स क्लब मिर्ची के साथ एंजॉय करो, लुटे जाओ डीजे रिचर्डन मिर्ची और दिखा।

मिर्ची इट्स हॉट।

0: The views expressed in the Devdutt Patnaik show are the hosts alone, not the channels.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
1: The Devdutt Patnaik show.
0: On Radio Mirchi, it's hot.
3: Hi everyone, aap sun rahe hain the Devdutt Patnaik show on Radio Mirchi.
1: Devdutt ka day starter. Day starter.
3: तो आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। क्यों हनुमान? बिकॉज यू नो टुडे मॉर्निंग मैं सूर्य नमस्कार कर रहा था। डॉक्टर्स हैव टोल्ड मी कि सूर्य नमस्कार सुबह करना ही है बिकॉज आई ट्रैवल अ लॉट। और मैंने ये सुना है कि सूर्य नमस्कार वॉज डिजाइंड बाय हनुमान जी, और हनुमान जी ने ये सूर्य नमस्कार किया था क्योंकि उनके गुरु थे सूर्य भगवान। द सन वॉज हिज टीचर, हिज गुरु। तो एज ए दक्षिणा उन्होंने सूर्य नमस्कार की निर्माण की थी। तो जब मैं सूर्य नमस्कार आज कर रहा था तो हनुमान जी की याद आ रही थी, एंड आई सेड यू नो व्हाट बेटर वे टू स्टार्ट द डे देन बाय डिस्कसिंग हनुमान जी के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में। क्योंकि देवदत्त पटनायक शो में हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेद पुराण, हमारे रीति रिवाज के बारे में डिस्कस करते हैं, यज्ञ हवन पूजा का डिस्कशन करते हैं, उत्सव के बारे में डिस्कस करते हैं, हमारी कल्चर के बारे में डिस्कस करते हैं। जो आध्यात्मिक कल्चर है, जो भारत की एक परंपरा है, हमारी संप्रदाय है, एंड दीज थॉट्स इन अ वेरी पॉजिटिव सिंपल वे टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे इंप्रूव कर सकता है। यू नो सूर्य नमस्कार फॉर एग्जांपल हेल्प्स आवर बॉडी, एंड यू नो यू लुक एट द मॉर्निंग राइजिंग सन एंड द सन इज टेलिंग यू गेट अप एंड मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डू। सो आज पूरे शो में हम डिस्कस करेंगे हनुमान जी के बारे में, मारुति के बारे में, अंजनेय के बारे में, उनके अलग अलग कहानियों के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
0: माइथोलॉजी का वो सबसे इम्पोर्टेंट शब्द जो सबसे पहले हनुमान के मुंह से निकला क्या था, बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कल भी आज भी
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आज हम हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं, और हनुमान जी की जब बात करते हैं तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज जो हमारे मन में आना चाहिए इज अबाउट स्ट्रेंथ, बिकॉज हनुमान जी इज वेरी स्ट्रांग। यू नो, एक चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि वी हैव बिकम वेरी मॉडर्न, यू नो, आजकल लोग बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पहले जमाने में हम लोग बैकवर्ड थे, अभी हम, यू नो, वी हैव बिकम कूल बिकॉज हमारे पास मोबाइल फोन है, हमारे पास गाड़ियां हैं। बट यू नो, एक चीज कनेक्ट करता है सब कुछ, यू नो, कल भी आज भी सब समय, इट ऑल टाइम्स, देयर इज वन थिंग व्हिच कनेक्ट्स ऑल ह्यूमन बीइंग्स। मनुष्य जो है ना वो असुरक्षित होता है, इनसिक्योर होता है, एंड वी आर ऑल इनसिक्योर। कुछ ना कुछ, जितनी अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, कोई भी हो, ह्यूमन बीइंग्स आर इनसिक्योर। और जब हम इनसिक्योरिटी की बात करते हैं तो भगवान की बात आती है, और हिंदू धर्म में हनुमान जी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि ही इज, जैसे बनारस में कहते हैं, वो संकट मोचन है, ही टेक्स अवे द प्रॉब्लम्स, हमारे जो असुरक्षता है ही टेक्स इट अवे, एंड ही इज अ वेरी यूनिक गॉड, बिकॉज एक बलवान तो है ही, उनके हाथ में तो गदा होता है, एंड इज वेरी वेरी स्ट्रांग, बट एट अनदर लेवल ही इज ऑल्सो एन इंटेलेक्चुअल। वो कविताओं से जुड़े हुए हैं, लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, कहते हैं कि पहली बार संस्कृत शब्द उन्हीं के मुंह से निकला था, सो ही इज अ विद्वान एज वेल एज बलवान, एंड वी ऑलवेज टेंड टू सेपरेट इट। हम हमेशा बोलते हैं कि जो बलवान होता है वो विद्वान नहीं हो सकता, और जो विद्वान होता है वो बलवान नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? यू कैन गो टू द जिम एंड बी, यू नो, स्ट्रांग एंड डू एक्सरसाइज एंड बी गुड इन स्पोर्ट, बट यू कैन ऑल्सो बी गुड इन स्टडीज, एंड यू कैन बी अ स्मार्ट गाय, यू कैन गो टू द बेस्ट कॉलेजेस, इंजीनियरिंग, कॉमर्स, आर्ट्स, बिजनेस, यू नो, हम ये डिवाइड करते रहते हैं दुनिया को। और आई थिंक ये आइडिया है, मैं जब भी हनुमान के बारे में सोचता हूँ मैं बोलता हूँ कि कल भी वो रेलिवेंट थे, आज भी वो रेलिवेंट हैं, क्योंकि वो बलवान विद्वान है, वो हमारे भीतर के पशु को जागृत करते हैं, रिमाइंड्स अस दैट देयर इज एन एनिमल इनसाइड अस, और हमें मनुष्य बनना है। यू नो, ही इज अ वानर, वन का नर, मींस सम पीपल से इट इज मंकी, सम पीपल से इट इज एप लाइक मैन, सम से इट इज अ ट्राइबल पर्सन, लेकिन क्या है कि ये एक कॉन्सेप्ट है। आर जर्नी, हमारी जो यात्रा है, इज फ्रॉम पशु टू पुरुष एंड टू बिकम बलवान एंड विद्वान। ऐसे ही बातें हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। स्टे ट्यून्ड, बिकॉज लॉट्स ऑफ स्टोरीज आर कमिंग योर वे। वी आर गोइंग टू डिस्कस हनुमान जी के स्टोरीज, नॉट जस्ट फ्रॉम रामायण बट फ्रॉम मेनी फोक ट्रेडिशंस। तो स्टे ट्यून्ड,
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान ने कैसे तोड़ा रावण का घमंड, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची। आज हम हनुमान के बारे में बात करेंगे। माय फेवरेट हनुमान स्टोरी इज जब हनुमान रावण को मिलता है लंका में, एंड दैट्स अ वेरी एक्साइटिंग स्टोरी। तो रावण इज द किंग ऑफ लंका, राक्षसों के राजा हैं, ही इज एजुकेटेड, ही नोज नाट्य शास्त्र, उन्हें गंधर्व विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान है, वास्तु शास्त्र का ज्ञान है, ही इज एजुकेटेड एंड इज वेरी पावरफुल। उनके पास पुष्पक विमान है, वो सोने के लंका में राज करते हैं, और उनको पता चलता है कि उनके अशोक वाटिका में एक बंदर ने कुछ तो गड़बड़ किया है, और बंदर को पकड़ के लोग लेके आ रहे हैं। एक बंदर कौन है? और जब बंदर आता है उसके सामने, वो बंदर संस्कृत में बात करता है उनके साथ, एकदम परफेक्ट संस्कृत में बात करता है। तो ही शॉक्ड, बिकॉज संस्कृत ब्राह्मणों की भाषा है, विद्वानों की भाषा है, ये बंदर कैसे बात कर सकता है? और फिर वो कहता है, बंदर बहुत ही बहुत डेंजरस शब्द बोलता है, कि कहता है कि मैं राम का दूत हूं, आई एम अ मैसेंजर ऑफ राम। तो अगर मैं दूत हूं तो यू शुड ट्रीट मी लाइक अ दूत, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। आप मुझे बांध के लाए हो यहां पे, मुझे एक आसन दीजिए, मेरा सत्कार कीजिए, ताकि मैं आपको एक मैसेज दे सकूं। और रावण कहता है कि बंदर, दूत, राम, ये कौन है? एंड ही इज लाइक क्वाइट डिस्गस्टेड, बहुत डिसमिसिव होता है कि चल चल, अपने आप को समझ रहा है राम दूत। तो हनुमान जी बोलते हैं कि देख, कोई भी तुम्हारे घर में आता है ना, तुम उसे सत्कार करते हो, इंसल्ट नहीं करते हो, मैं तुम्हारे घर पहले बार आया हूं, यू शुड ट्रीट मी नाइसली। और अगर तुम, यू डोंट ट्रीट मी नाइसली, मेरा इतना सेल्फ रिस्पेक्ट है कि मैं अपने आप को अच्छे से मैनेज कर लूंगा, तुम अगर मुझे आसन नहीं दोगे तो मैं अपने आप को आसन दे दूंगा। और अपनी पूंछ से वो एक आसन बनाते हैं, और एक ऐसे आसन बनाते हैं जो रावण के सिंहासन से ऊपर होता है। मतलब रावण जो हमेशा सब लोगों को नीचे देखता है, वो हनुमान जी को ऊपर देखता है, और उसका घमंड वहां पे इज डिस्ट्रॉयड, कि ये बंदर संस्कृत बोलने वाला उसको एक सेकंड में बताता है कि भैया तेरी औकात क्या है। ये जो स्टोरी है ना, बहुत ही सिंपल स्टोरी है, लेकिन सबको समझ में आता है। बताने से पता चलता है कि रावण हमारी जिंदगी में बहुत, रावण होते हैं, हम भी रावण होते हैं। सबको, हम चाहते हैं कि सब हमारे नीचे बैठे रहें, हम लोगों को, वी जज पीपल कि कैसे लोग होने चाहिए, बट सामने वाला हनुमान हो सकता है और वो हमें औकात दिखा देगा बहुत ही शांति से। और ये कहानियों में से ऐसी छोटी छोटी ज्ञान मिलती है, हमारा जो संस्कृति है, भारत धर्म है, हमारा जो कल्चर है, वो कहानियों के माध्यम से आता है। जैसे ये सो एक छोटी सी एपिसोड रामायण की, हनुमान जी और रावण के बीच में। एंड ऐसे ही स्टोरीज आई विल बी डिस्कसिंग ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची। तो स्टे ट्यून्ड
1: ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाया जाता है, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

0: वेलकम टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान को डिस्कस कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉड्स इन हिंदुइज्म।
1: द देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो,
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: गांव-गांव में उनकी मूर्तियां होती हैं, पूजा होती है, सो इफ आई एम श्योर यू हैव मेनी क्वेश्चंस ऑन हनुमान, तो जो भी क्वेश्चन है प्लीज पिक अप द फोन एंड आस्क मी द क्वेश्चन, आई एम एक्साइटेड टू हियर फ्रॉम यू। हेलो, देवदत्त हियर।
3: हाय, माय नेम इज अक्षता एंड आई एम कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनुमान जी को सिंदूर क्यों लगाते हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक है क्या?
0: थैंक्स अक्षता फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये जो सिंदूर है, लाल रंग जो होता है, ये भारत में से मंगल मतलब ऑस्पिशियस सिंबल माना जाता है, ऑस्पिशियस कलर माना जाता है, और हनुमान जी को हम मंगल मूर्ति भी मानते हैं, सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस, इसलिए उनको लाल रंग दिया जाता है। जैसे गणपति जी को भी मंगल मूर्ति मानते हैं, इसलिए उसको लाल रंग दिया जाता है। सो लाल रंग मांगल्य, मांगल्य इज प्रॉस्पेरिटी, एफ्लुएंस, गुड लक, चार्म, तो ये देवी के साथ जुड़ा हुआ है। और नॉर्मली लाल रंग हम देवी को जोड़ते थे, और बहुत गणेश एंड हनुमान आर लिंक्ड टू द शाक्त परंपरा, और इसलिए हनुमान जी की मूर्ति को मांगल्य बनाने के लिए, नहीं तो वो बहुत ही यू नो वेरी मैस्कुलिन इमेज जो है, वायलेंट इमेज है, बिकॉज उसके हाथ में वेपन्स हैं एंड ही इज फाइटिंग, लेकिन जब आप लाल लगाते हो तो वो शुभ बन जाता है, दैट इज द रीजन। आजकल लोग ऑरेंज कलर दे रहे हैं जो वैरागियों का रंग है, लेकिन मंगल रंग इज लाल, इसलिए शादी का जोड़ा भी लाल होता है, चूड़ियां लाल होती हैं, दैट इज द रीजन। ऑफकोर्स देर आर स्टोरीज की उन्होंने देखा कि सीता जी लाल रंग सिंदूर डाल रही हैं, इसलिए उन्होंने अपने पूरे शरीर को ढक दिया, ये सब लोक कथाएं हैं, लेकिन क्रियाओं की तरफ फ्रॉम रिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू लाल जहां लगा जाएगा, जैसे अलता होगा, ये होगा, इसे मंगल का शुभ है, शाक्त सिंबल है, देवी का चिन्ह है, तो दैट इज द पर्पस। वेलकम अक्षता। तो अक्षता का क्वेश्चन वॉज अबाउट सिंदूर रंग, और ये लाल रंग जो होता है ये ट्रेडिशनल कलर है जो हनुमान जी के साथ जुड़ा हुआ है। नॉर्मली जो मेल गॉड्स होते हैं उनको लाल रंग वेरी रेयरली दिया जाता है, क्योंकि हनुमान जी को देवी का सेवक माना गया है, वो प्रॉस्पेरिटी लेके आते हैं, इसलिए लाल रंग दिया जाता है।
2: क्या है हनुमान और पंचमुखी हनुमान में अंतर, बताएंगे देवदत्त। Keep listening.
1: Mirchi, it's hot.

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
1: द देवदत्त पटनायक शो
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: सो नाउ आई वांट टू डिस्कस माय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इमेजेस ऑफ हनुमान, जो पंचमुखी हनुमान जिसके कहते हैं। तो पंचमुखी हनुमान की मूर्ति अगर आप देखे होंगे तो इट इज नॉट, यू नो, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टैचू। नॉर्मली हनुमान जी की मूर्ति राम के मंदिर में होती है और वो वहां पे एक सेवक के रूप में, एक दास के रूप में हाथ जोड़ के बैठे रहते हैं राम के चरण पे। लेकिन पंचमुखी हनुमान जो होता है वो मंदिर में केवल हनुमान जी की मूर्ति होती है वो, और उनके दो हाथ नहीं, उनके 10 हाथ होते हैं, और उनके एक सर नहीं, 5 सर होते हैं, और एक ही सर वानर का रूप लेता है। बाकी 4 जो है, एक घोड़े का होता है, एक शेर का होता है, एक वराह या जंगली सुअर का होता है, और एक गरुड़ का होता है। पंचमुखी हनुमान की स्टोरी हमें अद्भुत रामायण से आती है। अद्भुत रामायण में कहते हैं कि राम गेट्स डिसअपीयर्स और उसे पाताल लोक में कोई लेके चला जाता है, और हनुमान जी हैज नाउ टू डू एवरीथिंग एंड फाइंड रेस्क्यू राम। तो स्टोरी है, हाउ डज हनुमान गो टू पाताल लोक। इसलिए पंचमुखी हनुमान को कभी कभी लोग पाताली हनुमान भी बोलते हैं, और पाताली हनुमान कुछ मंदिरों में उन्हें अपसाइड डाउन रखा जाता है बिकॉज वो पाताल में गए हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग, ये पंचमुखी क्यों बने हैं? क्योंकि हनुमान जी वहां पे डिस्कवर्स कि वो केवल वानर नहीं है, उनके अंदर बहुत क्षमता है। वो गरुड़ के जैसे भी काम कर सकते हैं, वो वराह के जैसे काम कर सकते हैं, वो शेर की भांति काम कर सकते हैं, वो घोड़े के जैसे भी काम कर सकते हैं। उनके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज हैं। ये मूर्ति है दिखाने के लिए कि जो एक वानर है वो महाबली कैसे बना। सो रामदास से महाबली की यात्रा, द ट्रांसफॉर्मेशन। जो सिंपल एक रामदास था जो इंस्ट्रक्शंस लेता था, वो कार्य करता था, जो राम बोलते थे वो करते थे, लेकिन पंचमुखी हनुमान के जगह में वो कर्ता बन जाते हैं। ही इज द पर्सन हु टेक्स इनिशिएटिव, ही सॉल्व्स प्रॉब्लम्स, और अंदर की अपनी जो पोटेंशियल है डिस्कवर करते हैं। आई एम श्योर आपके अंदर भी बहुत पोटेंशियल है टू डिस्कवर, एंड यू मस्ट फाइंड दिस पोटेंशियल सो दैट द होल डे यू फाइंड द हनुमान इनसाइड यू एंड क्रॉस द ओशन टू सक्सेस। So, best wishes and stay tuned for more interesting questions and answers and stories on the Devdutt Patnaik show on Mirchi.
1: The Devdutt on Radio Mirchi.
2: The Devdutt Patnaik show.
3: हमें ही नहीं, हनुमान को भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। कब और क्यों? बताएंगे देवदत्त।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो ऑन रेडियो मिर्च। यू नो, मैं हनुमान के बारे में बहुत लिखा हूँ मेरी किताबों में, मेरे एसेज में। मैंने हनुमान चालीसा के ऊपर एक किताब लिखी है, माय हनुमान चालीसा, जहाँ पे यू नो हर जो दोहा चौपाई उसके अंदर इतना ज्ञान है हनुमान जी के कथाओं में कि हर लाइन में ज्ञान होता है, एक आइडिया होता है, एक थॉट होता है, एक विश, यू नो, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि हनुमान जी के माध्यम से हमें कितनी चीजें बताई जा रही हैं। सो मेनी आइडियाज आर बीइंग प्रेजेंटेड टू अस। और ऐसे स्टोरीज जब आते रहते हैं तो एक स्टोरी है यू नो विच इज यू नो लिंक्ड टू हनुमान, विच यू नो ऑलवेज रिमाइंड्स मी दैट भगवान भी कितने हम्बल होते हैं हमारे सामने। कहते हैं कि जब हनुमान जी यू नो लंका के लिए जा रहे थे, देन ही वाज यू नो वो शोर ऑफ समुद्र के बगल में थे और सब बोल रहे थे, ऑल वानर्स वर गैदर्ड ओवर देयर, सामने समुंदर दिखाई दे रहा था, द ब्लू सी स्ट्रेचिंग अक्रॉस, कहीं बियॉन्ड होराइजन में सोने की लंका थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कितने दूर है होने वाला है ये। तो सब वानर बोल रहे थे इतना दूर तो हम छलांग नहीं मार सकते, कोई बोल रहा था हमें इतना योजन मींस इट्स अ मेजरमेंट टूल कि कितने माइल्स होते हैं यू नो, तो योजन कितने योजन तुम जा सकते हो। सो कोई बोल रहा था हमें 10 योजन जा सकते हो, कोई 50 योजन, तो हनुमान कुछ नहीं बोल रहा था, चुप बैठा था। तो जांबवन जो बैर जो भालू थे वो जाके हनुमान जी से पूछते हैं कि तू कितना कर सकता है, एंड हनुमान से मुझे पता नहीं मेरे में कितनी ताकत है। इमेजिन हनुमान जी बोल रहे हैं कि मुझे पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ, ही इज फुल ऑफ डाउट। एंड दैट टाइम हनुमान जी को जांबवन उनका वर्णन करते हैं और उनकी पूजा करते हैं और बोलते हैं कि आप कितने महान हो, डू यू नो हाउ ग्रेट यू आर, आप शिव जी के एक अवतार हो, आप सूर्य भगवान से आपने ज्ञान प्राप्त किया है, वायु आपके पिता हैं, तो यू हैव ऑल द विजडम, आप प्रिय हो राम जी के, उन्होंने आपको भाई जैसे माना है। सो इतना स्ट्रेंथ है, सो ही कीप्स प्रेजिंग हिम एंड कीप्स प्रेजिंग हिम। एंड हनुमान जब ये सुनते हैं, ही स्टार्ट्स ग्रोइंग इन साइज, ही बिकम्स बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर एंड बिगर, ही बिकम्स सो बिग कि उनकी जो सर बोलते हैं कि इट गोज बियॉन्ड द स्काई, इतने लंबे हो जाते हैं, पहाड़ भी उनके सामने छोटे छोटे दिखने लगते हैं। एंड देन वो छलांग मार के जाते हैं लंका के तरफ। और मतलब हनुमान जी को भी टू डिस्कवर हिज पावर्स कुछ मोटिवेशन की जरूरत होती है। एंड वी ऑल हैव अ हनुमान इनसाइड अस, हम सबको मोटिवेशन चाहिए। यू नो लोग हमेशा हमें हमारी नेगेटिव पॉइंट्स बताते हैं कि अरे तू ये नहीं करता है, तू वो नहीं करता, तू ये नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो हमें हमें पॉजिटिव पॉइंट्स देते हैं। यू नो भगवान की जब आरती जब हम करते हैं, जब हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, चालीसा में देखिए भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं, वैसे ही जब हम आरती करते हैं तो भगवान के पॉजिटिव पॉइंट्स बताते हैं। मतलब हर आदमी को आरती पसंद है, थोड़ा एक आध बार मेरे जो पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको आप प्लीज वर्णन कीजिए। टेल योर फ्रेंड्स दैट दे आर गुड एट मे बी इन पोएट्री, मे बी दे आर गुड एज क्रिएटिव पीपल, दे आर वेरी ऑर्गेनाइज, दे ड्रेस वेल, छोटी छोटी बातें उनके अंदर जो हनुमान है उसे जागृत करते हैं। आई थिंक दैट इज द लेसन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी ऑफ हनुमान बिकमिंग लाइक अ सुपरमैन, जंपिंग अक्रॉस द स्काइज एंड गोइंग टू सोने की लंका। तो ऐसे ही आइडियाज हम डिस्कस करते रहेंगे ऑन द देवदत्त पटनायक शो ऑन मिर्ची।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: हनुमान की जाति से जुड़ा एक और सवाल जब उठा तो क्या कहा देवदत्त ने? कीप लिसनिंग।

0: आज हम हनुमान के बारे में बात कर रहे हैं ऑन द देवदत्त पटनायक शो।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची।
2: द देवदत्त पटनायक शो
1: कॉलिंग देवदत्त
2: ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।
0: जब जिज्ञासा होती है तो प्रश्न आते हैं और प्रश्न से ही अच्छे उत्तर मिलेंगे। सो प्लीज आस्क मी क्वेश्चंस ऑन हनुमान। पिक अप द फोन राइट नाउ एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कॉल।
3: हेलो
0: देवदत्त हियर।
3: हेलो देवदत्त सर।
0: Hi,
3: मेरा नाम भास्कर है एंड आई एम ह्यूज फैन ऑफ योर्स।
0: थैंक यू सो मच।
3: और मेरा एक क्वेश्चन था
0: जी
3: हनुमान को लेके।
0: तो
3: हनुमान जी की जाति को लेके कंट्रोवर्सी हुई है, क्या रामायण में हनुमान की जाति की बात कहीं पे की गई है?
0: देखिए, जो शास्त्री होते हैं, जो पंडित होते हैं, इनसे दूर रहते हैं, तो ये राजनीति की बात है एंड यू नो वी शुड नॉट टेक दिस सो सीरियसली। हमारे जो शास्त्र है वो आत्मज्ञान के बारे में बात करते हैं और जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ ऊंचा नीचा की बात नहीं होती। हनुमान जी इज वानर और वो महाबली हैं एंड ही इज, उनके जात से कोई संबंध नहीं है। एंड वी शुड बी वेरी केयरफुल ऑफ दीज पोलिटिकल गेम्स दैट आर बींग प्लेड। आई पर्सनली कीप अवे। जितने भी शास्त्र मैंने पढ़े हैं, मैंने एक चीज सीखा है, जहाँ आत्मज्ञान होता है वहाँ जात पात की बातें नहीं होती। जहाँ आत्मज्ञान नहीं होता, जहाँ अहंकार होता है, वहाँ जात पात शुद्ध अशुद्ध की बातें होती हैं। तो हमारे शो में हम ज़्यादातर आत्मज्ञान की बातें करेंगे, पॉजिटिव एनर्जी, मॉडर्न सोसाइटी, इक्वालिटी एंड जस्टिस। वी डोंट वॉन्ट टू डिस्कस दिस जाती है, सो यू शुड नॉट बॉदर अबाउट दिस। ये पॉलिटिक्स होने दो ना शास्त्रों में। या सो दैट्स, आई थिंक वी शुड जस्ट बी मोर मॉडर्न 21st सेंचुरी इंडियंस एंड दैट्स माय सजेशन। बेस्ट ऑफ लक।
3: थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।
0: वेलकम। तो हनुमान विद्वान है, बलवान है, और जो विद्वान है उसके पास आत्मज्ञान होता है, जिसके पास आत्मज्ञान होता है वो जात पात में विश्वास नहीं करता।
1: ऑन रेडियो मिर्ची
2: द देवदत्त पटनायक शो। क्यों जुड़े हैं हनुमान शिव विष्णु और देवी के साथ, बताएंगे देवदत्त। कीप लिसनिंग।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। शाम कन्हाई ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर, राधे ले जाओ इसको घर।

कृष्णा तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम।

0: वेलकम बैक टू द देवदत्त पटनायक शो, जहाँ पे हम हनुमान जी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इन हनुमान जी के बारे में कितना बताना है आपको, लेकिन क्या करें, समय किसी के लिए रुकता नहीं है। शो अभी खत्म होने वाला है और एक बात मुझे हनुमान जी के साथ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हनुमान जी एक ही भगवान है, एक ही देवता है जो शिव जी के साथ जुड़े हुए हैं, विष्णु जी के साथ जुड़े हुए हैं और देवी के साथ जुड़े हुए हैं। अब शिव के मंदिर में जाओ तो हनुमान जी की मूर्ति कहीं मिल जाएगी, कहते हैं कि वो शिव जी के अंश हैं। अब विष्णु के मंदिर जाओ तो रामदास हैं, वो कृष्ण के साथ भी जुड़े हुए हैं। और अगर देवी मंदिर में जाओ, शेरावाली के मंदिर में जाओ, तो द्वारपाल के रूप में वहां पे खड़े होते हैं ध्वजा पकड़ के। तो दिस इज अ गॉड हु इज वेरी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है उनके सिंप्लिसिटी की वजह से। वो विद्वान है, वो बलवान है, बट इज ऑल्सो अहंकार बिल्कुल नहीं है उनमें, बहुत ही शांति से काम करते रहे। और हाँ, इस शो के बारे में अगर आपका कोई फीडबैक है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो टाइप कीजिए #devdattonmirchi devdutt onmirchi और भेज दीजिए 9033 मिर्ची पर, या आप अपना फीडबैक इस नंबर पे भी शेयर कर सकते हैं 9033647244। मैं देवदत्त पटनायक मिलता रहूंगा आपसे मंडे टू संडे हर सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। थैंक यू।
1: देवदत्त ऑन रेडियो मिर्ची,
2: द देवदत्त पटनायक शो।
3: द व्यूज एक्सप्रेस्ड इन द देवदत्त पटनायक शो आर द होस्ट्स अलोन, नॉट द चैनल्स।

0: देखकर रात को दिल खुशी हो गया। रात में सोने से पहले मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन नहीं देखी, मैंने देखी द मूवी प्रिटी वुमन।
1: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on Mirchi. और देखो पता है, सोने से पहले जो कुछ आप पढ़ के या देख के या सोच के सोते हो ना, वो डिसाइड करता है कि आपको किस तरीके के ख्वाब आएंगे और आपकी अगली सुबह जो है वो किस मूड के साथ शुरू होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हमारी लाइफ का कि रात में सोने से पहले हमने क्या सोचा, हमने अपना दिमाग कहाँ लगाया। सो मैंने सोचा कि यार मतलब अभी क्या हो रहा है कि ना हम फोन के अंदर इतना ज्यादा घुसे हुए हैं कि मैंने कहा फोन को साइड में रखते हैं और अब ऐसी मूवी देखते हैं जिससे कि भले मैंने मूवी पता नहीं कितनी बार देखी हुई है लेकिन स्टिल आई वॉन्टेड टू डाइवर्ट माई माइंड एंड आई पिक्ड अप द मूवी प्रिटी वुमन एंड आई वॉच दिस फिल्म बिकॉज मुझे जूलिया रॉबर्ट्स और रिचर्ड गियर की ये फिल्म बड़ी अच्छी लगती है और ये जोड़ी भी मुझे बहुत अच्छी लगती है यार। एंड बाय द वे ये जो फिल्म है ना, इसका एक सीन है, अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो देखना जरूर, और अगर देखी है तो आपको ये सीन शायद याद होगा जब रिचर्ड गियर जूलिया रॉबर्ट्स के सामने एक ज्वेलरी बॉक्स रखते हैं और जूलिया रॉबर्ट्स जो है शी रीचेज आउट फॉर द पीस ऑफ ज्वेलरी और एकदम से वो बॉक्स बंद कर देते हैं। तो यू नो वो एकदम से अपना हाथ पीछे खींचती है एंड शी इज अ बिट स्टार्टल्ड एंड वो एकदम से ना मतलब शी ब्रेक्स इन टू अ लाफ्टर और वो लाफ्टर उनकी बड़ी ऑर्गेनिक लगती है, बहुत प्यारी लगती है। एंड दैट सीन वॉज एक्चुअली अ सीन जो कि डायरेक्टर ने प्लान किया था एज अ प्रैंक ऑन जूलिया रॉबर्ट्स बिकॉज जूलिया रॉबर्ट्स जो कि एट दैट टाइम was very new to the industry, वो अक्सर सेट्स पर ना बड़ी स्लीपी हुआ करती थी, उनको हमेशा ही नींद आ रही होती थी। तो उनकी नींद भगाने के लिए उन्होंने सोचा कि यार ये प्रैंक करते हैं और जूलिया रॉबर्ट्स को एकदम से ना चौंका देते हैं, तो उनकी नींद वीन जो है ना वो भाग जाएगी। और वो सीन जैसा शूट हुआ वैसा ही रखा गया सो दैट वो ऑर्गेनिक भी लगे और ऑफकोर्स उस सीन के साथ एक याद जुड़ी रहे जो आज इतने सालों बाद मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। नहीं, अब जब अच्छी जोड़ियों की बात की जा रही है तो हॉलीवुड से बॉलीवुड पे आते हैं यार, अपना एरिया है। और बॉलीवुड की 90s और अर्ली 2000 की कुछ फेमस ऑन स्क्रीन जोड़ियां हैं जो हम सबके दिल को छू गई है, उनके बारे में बात करते हैं। तो आज मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हुई मैं आपसे यही सारी बातें करने वाली हूँ। अभी के लिए तो फिलहाल मैं आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी। 98.3
1: मिर्ची, इट्स हॉट। दोस्ती के नाम पर अगर कभी मैं दुआ देती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ कि दोस्ती हो तो काजोल और शाहरुख जैसी, जो कि ऑन स्क्रीन तो दिखाई देती देती है लेकिन ऑफ स्क्रीन उससे ज्यादा तगड़ी है, तभी तो ऑन स्क्रीन इतनी अच्छी केमिस्ट्री निकल कर आती है।
2: सारा जमाना, सारा का दीवाना।
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड शाहरुख खान एंड काजोल की जोड़ी, ओ हो हो हो हो, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर आज तक भी इस जोड़ी को हम मिलेनियल्स नहीं भूल पाए। ये जोड़ी तो इनफैक्ट बेंचमार्क बन गई है यार बॉलीवुड की जोड़ियों के बीच में, कि यार ऐसी केमिस्ट्री, ऐसा स्पार्क, इतना फन हमें बहुत कम नजर आ रहा है तब से लेकर अब तक, नहीं क्या? एंड यू नो व्हाट, इन दोनों ने DDLJ में तो काम किया ही किया, वहां से तो ऑफकोर्स इस जोड़ी का और हो गया, लेकिन बाजीगर में सबसे पहले इन दोनों ने काम किया था। एंड बाजीगर का एक किस्सा है ऑफ द स्क्रीन ऑफ कोर्स, कि हुआ ये था कि जो शूट था वो 1 जनवरी को शुरू हुआ था एंड 31 की रात को सब पार्टी करके, यू नो, विद अ हैवी हेड, क्योंकि कोई सोया था, कोई नहीं सोया था। जब सेट पर पहुंचे तो ऑफ कोर्स एक रात पहले तो उन्होंने बहुत ही भारी भरकम पार्टी की हुई थी एंड ही वॉज वेरी स्लीपी एट दैट टाइम। ऑन द कॉन्ट्ररी, काजोल वो पूरे टाइम सिर्फ और सिर्फ बातें करती चली जा रही थी, जो उनको मिल रहा था उससे बात करती चली जा रही थी। पर शाहरुख खान वाज वेरी साइलेंट, क्योंकि उनका ना सर भारी हो रहा था, उन्हें नींद आ रही थी, तो ही वाज नॉट रियली इंटरेस्टेड कि वो ना चैटर बॉक्स बने उस टाइम पर। काजोल को लगा कि ये तो अलग ही निकल के आया बंदा, इसके तो एटीट्यूड ही नहीं खत्म हो रहा है। वो तो लेटर ऑन इन दोनों की केमिस्ट्री जो है वो सेट हुई, बात हुई, तो पता लगा कि नहीं भाई, बंदा इतना एटीट्यूड वाला है नहीं। ऐसे ऐसा हुआ था कि 31 की रात को जब बंदे ने पार्टी करी है तो 1 की सुबह वो कैसे चर्पी हो सकता है। बस फिर क्या, उसके बाद से लेकर आज तक तो ऊपर वाले के करम से इनकी दोस्ती की गाड़ी को ब्रेक नहीं लगे। टचवुड इनकी जोड़ी ऊपर वाला सलामत रखे। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. It's hot.
1: शाहरुख एंड माधुरी की जोड़ी या फिर सलमान खान और माधुरी की जोड़ी? आई थिंक आई liked सलमान एंड माधुरी की जोड़ी मोर ऑन स्क्रीन देन शाहरुख खान एंड माधुरी की जोड़ी, नहीं क्या?
2: सारा जमाना सारा का दीवाना
3: मिड डे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. एंड ये ना मेरे लिए भी बचपन में टफ हो जाया करता था कि मुझे कौन सी वाली जोड़ी ज्यादा पसंद आती है. और आज मिडे मोहब्बत की गाड़ी को हम 90s के गियर में डालते हुए 90s और अर्ली 2000 की बॉलीवुड की हिट और फेमस जोड़ियों के बारे में बात करें, जिनमें से एक है सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी भी. एंड वेल, ये काफी हिट जोड़ी थी ऑफकोर्स. इन लोगों ने हम आपके कौन साथ में करी, साजन करी, एंड ये दोनों ही मूवीज बड़ी हिट थी. इनफैक्ट जब हम आपके हैं कौन के लिए कास्टिंग हो रही थी एंड एट दैट टाइम सलमान और माधुरी जब ऑन स्क्रीन नजर आए तो काफी सारे लोगों ने एक पॉइंट छेड़ा था कि माधुरी दीक्षित सलमान खान से ज्यादा बड़ी लग रही है ऑन स्क्रीन. बट कुछ भी कहो, हमें तो जोड़ी पसंद आई थी और उसके बाद तो इन लोगों ने और भी फिल्में साथ में करी थी. इनफैक्ट इनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी नहीं, ऑफ स्क्रीन जोड़ी भी काफी अच्छी चली थी. बिकॉज ऑफ द रीजन कि जब ये लोग हम आपके कौन के लिए शूटिंग किया करते थे तो माधुरी दीक्षित ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सलमान खान बहुत मस्करी करते हैं ऑन द सेट्स ऑफ द मूवी. और उससे होता ये था कि सभी का मूड एकदम हल्का बना रहता था और शूट करने में मजा भी बहुत आता था. यार, ऐसे कलीग्स होना जो वक्त के साथ दोस्त बन जाए तो फिर बात ही क्या है. यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: चोरी चोरी चुपके चुपके करने के बाद प्रीति जिंटा और सलमान खान के बीच में बहुत बड़ा टसल हो गया था, जिससे कि जाने मन की शूटिंग रुक गई थी। भाई
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड हुआ ये था कि जब सलमान खान और प्रीति जिंटा ने चोरी चोरी चुपके चुपके के लिए शूट किया था, और फिर ये कहा जा रहा था कि ये फिल्म जो है ये अंडरवर्ल्ड ने फंड करी है एंड ऑल दैट, तो ऑफ कोर्स उस जमाने में बात ऐसी थी कि सबके फोन्स भी टैप किए जाने लगे थे। काफी सारे टेप्स तो हमने भी सुने बड़ी इंटरेस्टिंगली, एंड वो जो टेप्स थे उनमें से एक सलमान खान का भी था, जिसमें कि वो कुछ एक्ट्रेसेस के बारे में बुरा भला कह रहे थे और ऐसा कहते हैं कि उन्होंने प्रीति जिंटा के बारे में भी कुछ कह दिया था, जिससे प्रीति जो थी वो बड़ी नाराज हुई। एंड एट दैट टाइम सलमान और प्रीति जाने मन मूवी के लिए शूट कर रहे थे, तो प्रीति जिंटा ने साफ तौर पे मना कर दिया था कि मैं सलमान के साथ शूट नहीं करूंगी। अब इससे पहले कि कोई बोलता पेंसिल और हो जाती ये फिल्म कैंसिल, जैसे तैसे करके इन दोनों के विवादों को किसी तरीके से सुलटाया गया, इन्हें बिठाया गया, बात करवाया गया, क्लैरिटी मिली, एंड देन उसके बाद प्रीति वॉज टोटली फाइन एंड शी बिगैन वर्किंग विद सलमान खान अगेन फॉर द फिल्म जाने मन। उफ़ माय गॉड, बड़े होते होते कितनी सारी चीजें बदल जाती है ना यार, क्योंकि बचपन में जब लड़ाइयाँ हुआ करती थी ना, तो हम तो बस इतना कहते थे कि लड़ाई लड़ाई माफ करो, गांधी जी को याद करो, और सारे के सारे जो है वो याद भी कर लिया करते थे और माफ भी कर दिया करते थे। बड़े होने के बाद ऐसा नहीं होता है बॉस, काफी उलझने हो जाती है। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आज ही मैंने ऑफिस में नरसी भैया से पूछा अपना सैलेड खाने के बाद वो जो डब्बा था उसके लिए कि नरसी भैया आप लोग इन डब्बों को धो धो के रखते हो क्या? क्या करूं, मेरे अंदर का मिडिल क्लास इंसान तो कहीं जाने नहीं वाला। नरसी भैया ने बोला कि नहीं मैडम, तो मैंने वो डब्बा फेंक दिया। लेकिन 90s में ऐसा नहीं हुआ करता था भाई, इतना सुंदर डब्बा कोई वेस्ट नहीं करता था।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड स्पेशली वो टिन के डब्बे जिनमें की बटरी सी खुशबू आती थी काफी दिनों तक, क्योंकि उनके अंदर आती थी बटर कुकीज। वो कुकीज तो हम खा लिया करते थे फटाक से झटाक करके, लेकिन वो डब्बे जो थे वो रह जाया करते थे। उनको मजाल है कि किसी ने हाथ लगा के डस्टबिन में फेंक दिया हो ही नहीं सकता था। वो डब्बे तो इस घर में इसीलिए आया करते थे ताकि फिर उनके अंदर सुई धागे के किट रखे जाए। एंड इवेंचुअली होता भी वही था। अब तो मुझे बड़ी याद आती है यार उन किट्स की, बिकॉज ऑफ द रीजन कि यार आजकल तो बड़े फैंसी फैंसी से किट्स आने लग गए। डिपार्टमेंट स्टोर पर फैंसी फैंसी स्टोर्स होते हैं, उनमें फैंसी फैंसी स्विंग किट्स होते हैं, लेकिन हमारे बचपन के टाइम में तो ये टिन के डब्बे हुआ करते थे जिनके अंदर हमारी नानी दादी फिर मम्मियाँ मासी उन्होंने सारे के सारे अपने ये जो सिलने के खजाने होते थे वो रखे हुए होते थे। अलमारी खुलती थी और सारे तय किए हुए कपड़ों के ऊपर रखा हुआ होता था वो टिन का डब्बा भी। और बड़ा खूबसूरत लगता था यार ये टिन का डब्बा, बाहर से टिन का होता था, उसके ऊपर जो भी डेंटिंग पेंटिंग की हुई है वो तो की हुई है, और जब ये डब्बा खुलता था तो अंदर रंग बिरंगी दुनिया सामने आ जाया करती थी। इस टिन के डब्बे के अंदर रखे हुए उस स्यूइंग किट की जो यादें हैं वो आज भी हमारी जिंदगी में काफी सारी चीजें रफू कर जाती हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मैंने प्यार किया का ये गाना मुझे बहुत पसंद है, सुकून लगता है मुझे ये गाना। लेकिन हाँ, इसी के साथ ये बात भी है कि ये अपना माल नहीं है, चोरी का माल है।
1: मिर्ची थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
0: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, the song that I'm talking about is राम लक्ष्मण की जोड़ी का कॉम्पोजिशन, SP बाला सुब्रमण्यम एंड लता जी की आवाज में।

जिसे गाया स्टीवी वंडर ने था। एंड आई वंडर कि आई स्टिल लाइक द हिंदी वर्जन मोर, कॉज इस गाने के लिरिक्स ज्यादा जोर से हिट करते हैं ना यार। हाँ, बॉलीवुड के प्रति बायस तो हो गई, और वो भी 90s के बॉलीवुड के लिए, तो व्हाई नॉट। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: There was this moment in K3G जब करीना कपूर ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन तहे दिल से चाहती थी कि पू बनी पार्वती अब ये हो ही जाए, लेकिन वो इतनी डेस्परेट थी कि वो ऐसा कर जाएंगी, ये तो हमें करण ने बताया।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड जब K3G की शूट हो रही थी at that time, करण जौहर ने एक इंटरव्यू में बताया कि there was this scene, आपको और मुझे हम दोनों को ये सीन याद है बहुत अच्छी तरीके से, जब शाहरुख खान और जया बच्चन एक दूसरे से सालों बाद मिलते हैं थैंक्स टू ऋतिक रोशन। एंड होता ये कि दूर से काजोल इज वॉचिंग, दूर से ऋतिक रोशन इज वॉचिंग, एंड देर इज अ करीना कपूर ऑल्सो इन द फ्रेम हु इज वॉचिंग। यू नो, यहाँ माँ बेटे जो है वो इतने सालों बाद मिल रहे हैं। काजोल के इमोशन जस्टिफाइड, ऋतिक रोशन के इमोशन जस्टिफाइड, लेकिन पू, यू नो व्हाट रियली हैपेंड वाज कि जब ये सीन शूट हो रहा था एट दैट टाइम, करण जौहर ने पहले ही बोल दिया था कि यू नो, मतलब बहुत ज्यादा रोना नहीं है लेकिन रोना है। और जैसे ही करण जौहर ने बोला एक्शन, तो करीना कपूर भय करके रोने लग गई, जिसपे करण जौहर को थोड़ी देर बाद बोलना पड़ा कि तुम क्यों इतना रो रही हो, वो तुम्हारा भाई नहीं लगता, वो तुम्हारे पापा नहीं लगते, तो why is it that तुम्हारा कैरेक्टर इतना रो रहा है। जिसका कमबैक जवाब करीना कपूर ने करण जौहर को ये दिया कि आई एम एन एक्टर नाउ, आई हैव टू प्रूव माय सेल्फ, बिकॉज देयर वर एक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, काजोल हु वर देयर इन द फ्रेम्स ऑफ कॉज। करीना को लगा कि यार मैं कब एक्टिंग करके बताऊंगी, यार इस पू के अंदर जो पार्वती है वो आखिर कब तक चुप बैठेगी, फाइनली एक दिन तो उसको निकल कर आना ही है। तो करीना ने सोचा कि आज ही शायद वो दिन है, बट नॉट रियली। आई मीन ऑफ कोर्स उसको रीशूट किया गया एंड देन थोड़े बहुत करीना के इमोशंस दिखाए गए ऑन स्क्रीन, नॉट द बाल्टी भर के रोना वाला सिनेरियो। हाँ, अब एक बात बताओ, आप अपने बॉस को अपने काम को लेकर इतना जस्टिफाई करते हो जितना करीना कपूर जस्टिफाई करने चली थी? डीएम करो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, और अभी के लिए स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: डियर सोशल मीडिया और फोन के चुराए हुए वक्त,
2: यादों को चिट्ठी।
1: तुम्हारी बड़ी याद आती है यार, वो दिन जब हम बेफिक्र होकर गलियों में खेला करते थे, जब दोस्तों से मिलने के लिए घर के दरवाजे खटखटाने पड़ते थे, जब बातचीत आंखों में देखकर होती थी और जब हंसी का शोर सिर्फ दिलों तक नहीं पूरे माहौल में गूंजता था। तब शामें छतों पर कटती थी, तारों को निहारते हुए सपने बुने जाते थे, किताबों के पन्नों की खुशबू में घंटों डूबे रहते थे और खत लिखना वो एक एहसास हुआ करता था। हर एक लफ्ज में इमोशंस जिंदा रहते थे। आज फोन की स्क्रीन पर उंगलियां चलती हैं, पर रिश्तों में पहले जैसी गहराई नहीं है यार। दोस्त ऑनलाइन तो हैं, लेकिन पास नहीं। दिल की बातें अब स्टेटस में बदल गई हैं और खुशियों को लाइक्स और कमेंट्स में गिनने लगे हैं। मेरे प्यारे स्मार्टफोन और सोशल मीडिया में खोए हुए वक्त, दिल आज भी तुम्हारी तलाश में है। काश फिर से वो दिन लौट आए जब हम सच में जिया करते थे, ना कि सिर्फ ऑनलाइन मौजूद रहते थे। तुम्हारी याद में खोई हुई इंसान, तुम्हारी सारा, जो आज भी तुम्हारी राह तकती है। You tune in with me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा on Mirchi, it's hot.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में ओम शांति ओम से ये गाना गूजबम्प्स दे देता है यार।
2: मिर्ची 90s का सेट।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड वेल, गूजबम्प्स तो इस गाने ने दिए हैं, एंड आई थिंक इट इज बिकॉज ऑफ द म्यूजिक जो कि विशाल शेखर ने कंपोज किया है। बिकॉज यू नो देर आर टाइम्स जब आप इस गाने को सुन रहे होते हो और पूरे खो जाते हो उस गाने को सुनते सुनते ना, तो द म्यूजिक टेक्स यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड। आई डोंट नो हाउ डज म्यूजिक हैज दैट मैजिक टू टेक यू टू अ डिफरेंट वर्ल्ड, बट यस इट डज हैपन। ऊपर से सोने पे सुहागा आर द लिरिक्स ऑफ दिस गाना, वेल ब्यूटिफुल लिरिक्स आई मस्ट से। एंड ये जो लिरिक्स है ना इस गाने के, ये क्लियरली इस बात को दर्शाते हैं कि जब आपको कोई इंसान या कोई चीज या कोई सिचुएशन भी ले लो यार, बहुत पसंद आ रही होती है ना, बहुत ज्यादा, तो आपको समझ नहीं आ रहा होता है कि आप उसे एक्सप्लेन कैसे करो कि ये कितना अच्छा लग रहा है या कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस गाने में जब बंदा बंदी के लिए ये लाइन्स गा रहा है ना कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी जुबा में भी वो लफ्ज ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सको। ओए होए, मैं आपको सच बात बताऊं, ये फीलिंग मुझे कब आई है, प्यार मोहब्बत में नहीं आई है। अक्सर ऐसा होता है ना कि रात के अंधेरे में आप छत पर चढ़ जाते हो और चांद देख रहे होते हो, एंड मेरे साथ तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता है कि चांद को देखने के बाद ना एक अलग ही एनर्जी आती है बॉडी के अंदर। और एक टाइम ऐसा आता है जब आप आसमान में चांद तकते रहते हो ना, आपको वो चांद इतना खूबसूरत लग रहा होता है, इतना खूबसूरत लग रहा होता है कि आपका दिल कर रहा होता है कि इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है, और मैं इस बात को किस तरीके से बयां करूं कि चांद कितना खूबसूरत है। और तभी ये लाइंस मेरे दिमाग में भी अक्सर आई है कि तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कि यार तुम दिख तो रहे हो आसमान में, तुम्हें देख तो रही हूँ मैं, लेकिन तुमको पाकर भी मैं एक तरीके से तुम्हारे अंदर खो चुकी हूँ। और अगर मैं कहना भी चाहूँ ना, तो मुझे नहीं समझ में आता कि मैं किस जुबान में ये बात कहूँ, क्योंकि मेरे पास लफ्ज नहीं होते हैं कि चांद कितना खूबसूरत लग रहा होता है। इनफैक्ट हर बार मैंने एक कोशिश करी है कि अपना फोन निकाला है और उस चांद की खूबसूरती को कैप्चर करने की कोशिश की है, लेकिन मेरे पास क्या, फोन की लेंस के पास भी वो जुबान और वो नजरे ही नहीं है कि वो उसकी खूबसूरती को जिस तरीके से वो आसमान में नजर आ रहा होता है ना, अपने लेंस में कैप्चर कर पाए। अब बताओ आपके साथ कभी ऐसा हुआ है चांद को लेकर? इंसान को लेकर तो अक्सर इंसान के साथ ऐसा होता ही होता है। तो चलो, दोनों में से जो भी आपके साथ पहले हुआ है या हुआ है, डीएम कर दो ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, उसका जिक्र करते हुए। और अभी फिलहाल के लिए यही गाना चलाते हुए मैं यहाँ से जाती हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रही प्यार की, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। बाकी यहाँ के अलावा मैं मिल ही जाऊंगी आपको ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi. It's hot. Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot. 98.3 Mirchi, it's hot.

0: Tony.
1: Radio Mirchi.
2: Radio Mirchi, it's hot.
3: Mirchi, it's hot.

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: आई एम जेन्युइनली कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड फॉर दिस वन.
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हो आप, और अगर आपकी यादें किसी चीज को लेकर एक स्पेसिफिक तरीके से बनी हुई है, इनफैक्ट वो बहुत ही खूबसूरत सी यादें हैं, और उस चीज को लेकर कुछ नया किया जाए तो आपको दिमाग में रहता है ना कि यार बस मेरी उन यादों के साथ छेड़छाड़ मत करना, मतलब जो नॉस्टैल्जिया है उसको मेरे लिए खराब मत करना. चलो कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट दिस आइकॉनिक टीवी सीरीज ऑफिस. ऑफिस याद तो होगा आपको, पंकज कपूर स्टार है जिसमें वो मुसद्दी लाल बनते हैं और वो ड्रामा. ओ हो हो हो हो. सो बेसिकली इस सीरीज का सीजन 2 आ रहा है. यस यू हर्ड इट राइट. जिसमें लीड रोल निभाने वाली हैं रिनाउंड टीवी स्टार श्रुति शर्मा. अब चलिए इनके पहले के काम भी आपको याद दिला दूं. गठबंधन, नजर 2, नमक इश्क का, मिट्टी, इनफैक्ट हीरा मंडी में भी नजर आई है मोहतरमा. तो ये ऑफिस ऑफिस का सीजन 2 आने की वजह से हम टीवी बफ्स के लिए, इनफैक्ट 90s किड्स के लिए एक वेव ऑफ नॉस्टैल्जिया तो है, बट साथ में एक डर भी है कि हमारे उस नॉस्टैल्जिया को खराब ना किया जाए विद दिस न्यू वर्जन. एंड दैट इज द रीजन आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड. बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी. मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति, आपके साथ. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट।

टेस्टी सैंडविच, हैमबर्गर या बटर रोल, सबसे मैं हूँ टेस्टी, सुन ले मैं हूँ बेबी डॉल। गुस्सा तेरी गोली जैसा, बोल तलवार से, दिल का शिकार कर, हनी जरा।

0: Mirchi. It's hot.
1: लागी माँ जी, बच्चों को यहाँ पर साउंड सिस्टम से दूर रखें।

0: चैनल।
1: 98.3 मिर्ची, इट्स हॉट।
2: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे।

0: मुझे तेरे प्यार में चमको जैसे चुगनो।
1: हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इज क्वाइट गुड एट इट।
2: श्रुति श्रुति
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ। स्टीरियोटाइपिंग की बात कर रही हूँ बाबू मोशाय। अब देखो ना, हिंदी सिनेमा में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको स्टीरियोटाइप कर दिया गया है। जहाँ एक तरफ इंडिया इज अ डाइवर्सिफाइड कंट्री, उसमें जो चीजें हैं उसको और बेटर वेज में पोर्ट्रे करना चाहिए ना हिंदी सिनेमा को। बट वी एंड अप स्टीरियोटाइपिंग पीपल ऑन स्क्रीन बेस्ड ऑन देयर प्रोफेशन और फॉर दैट मैटर एथनिसिटी। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं स्टीरियो

रैंक पे है, उसके सरनेम्स को शिंदे या फिर तांबे कुछ इस तरीके से रखा जाता है। खैर हर दूसरी मूवी में ऐसा ही होता है, इसलिए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही स्टीरियोटाइप्स की बात कर रही हूँ। इन द मीन टाइम अगर आपके दिमाग में भी कुछ ऐसे स्टीरियोटाइप्स आए देन प्लीज फेसबुक ट्विटर या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट करो। आई एम देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, दैट इज मिर्ची श्रुति। तब तक के लिए एंजॉय द सॉन्ग्स राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Authentic, original, and better than outright.

मैं तो उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा उड़ा वे कजरा मेरे अंदर हुंदी शूशा शूशा हर वेले हंसा कवा हूँ हाँ।